0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX, फोन ब्रेडफुट 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: 101 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिज़वी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिज़वी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: On Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677. 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाज रोजा ओ कुर्बानी हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
13: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
12: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
13: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: يا خير من دفنت في البقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك

0: पता B5 सैंड हेवन अपार्टमेंट्स, नज्द तीन तलवार, बिल मुकाबिल बॉम्बे लाइट, फैसल बैंक ब्रांच। इंतहाई मुनासिब कीमत पर आरामदेह सफर के लिए राबता कीजिए। फोन 565-44-15-16 और 17। सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका एतमाद हमारी कामयाबी।
1: यू आर लिसनिंग टू
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07... 07-

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फाउंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
4: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

जी ज़मीन का नाम खूबसूरत सा आपने गीत सुना। वैसे तो वो छनकार गीत था, छनकार गीत हमें तो वैसे बजाते खुद इतने पसंद नहीं है क्योंकि वो मज़ा नहीं आता गीत सुनने में। जो ओरिजिनल होता है ना वो ओरिजिनल ही होता है, जितनी मर्जी कॉपी कोई कर ले, जितना मर्जी कोई उसमें आगे पीछे और चीज़ें हम डाल दें, जैसे ये छनकार गीत हैं, तो वो सच बात है वो लुत्फ नहीं आता जो एक ओरिजिनल चीज़ सुनने में इंसान को आता है। बहरहाल बाज़ों का ऐसा भी हो जाता है, अब हमें तो वही पेश करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जरका साहिबा बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगा। आपने फ़ोन किया, तहे दिल से आपके मशकूर ममनून है। आपने फरमाइश की है गीत की, जिस गीत की फरमाइश की बस सुनती रहिए, हम अभी उसको ढूंढ के तो आपके लिए हम उसके बाद लगाते हैं और ज़रूर लगाएंगे, फिक्र मत कीजिएगा। और साथ ही साथ आपने तेज से माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी एफिशिएंट स्टूडेंट हैं आप, सच में बहुत विजिलेंट, कि आपने तेज से अल्फाज भी हमें कुछ बताए। अभी हम नहीं बताएंगे जो अल्फाज आपने बताए, आपने कहा कि दोबारा फिर हमने आपसे गुजारिश की कि आप दोबारा कॉल कीजिएगा क्योंकि गीत खत्म हो रहा था, हमें ऑन ईयर आना था, तो आपसे ज़्यादा लंबी बात नहीं हो पाई है, माजरत उसके लिए। काइंडली आप बराए मेहरबानी दोबारा फ़ोन कीजिएगा तो फिर मजीद जो तेज से शुरू होने वाले ऐसे अल्फाज हैं जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बहुत अच्छे अल्फाज आपने बताए, जितने भी बताए 1 2 3 4 5 6 अल्फाज आपने हमें बताए, तो मजीद आपसे गुजारिश है कि कोई अच्छे से अल्फाज ढूंढ के हमें बताइएगा और फिर फ़ोन कीजिएगा। लीजिए अब क्या करते हैं कि ये बहुत खूबसूरत सा गीत जो है ना, ये आप तमाम सुनने वालों के नाम करते हैं और आप शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में 01274 3066777 के जरिए।

जी हाँ, ज़मीन का नाम खूबसूरत सा आपने गीत सुना और फरमाइश किसकी थी जरका साहिबा, आपकी बहुत शुक्रिया। खूबसूरत सा गीत था, उम्मीद करते हैं जरका साहिबा आपने सुन लिया होगा अपनी पसंद का गीत। और कॉल की अज़रा साहिबा आपने बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, काम में आपने कहा कि बहुत मसरूफ़ हैं, ऑन ऑफ आप प्रोग्राम सुन रही हैं, लेकिन आपने कहा कि तमाम जो आपकी दोस्तें हैं उनका गुलदस्ता है, उन सब के लिए खूबसूरत सा कोई गीत लगा दीजिए अच्छा सा। तो अज़रा साहिबा, सबसे पहले तो बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमें अंदाज़ा है कि जब इंसान काम में मसरूफ होता है तो बड़ा मुश्किल होता है वक्त को निकालना, लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला, आपने कॉल की, तहे दिल से आपके मशकूर। आने वाला जो गीत होगा वो तमाम आपकी जो दोस्तें हैं उन सब के लिए होगा, इस उम्मीद के साथ कि वो इसे पसंद करेंगी। उससे पहले मोमिन के हवाले से अलामा मोहम्मद इकबाल क्या फरमाते हैं अपनी किताब ज़र्बे कलीम में, उसकी जो खूबी बयान करते हैं एक मोमिन की, कहते हैं कि हो हल्का ए यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का ए यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रजमे हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, अफलाक से है इसकी हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन, जचते नहीं गुनशिक को हमाम इसकी नजर में, जिब्रीलो सराफील का सयाद है मोमिन। और जन्नत में कहते हैं कि कहते हैं फरिश्ते कि दिलावेज है मोमिन, हूरों को शिकायत है कम आमेज है मोमिन। ये मोमिन की खूबियां अलामा मोहम्मद इकबाल ने बयान की, बहुत खूबसूरत खूबियां बयान की। अल्लाह करे कि हम सब मुसलमान तो हैं ही जो हैं, और जो हैं वो मोमिन बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए, अपनी सी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। चलिए अब जो अज़रा साहिबा ने कहा कि जी उनकी दोस्तों के लिए गीत लगा दिया जाए, तो लीजिए ये खूबसूरत सा गीत अज़रा साहिबा आपकी जानिब से, आपके जो

जी सामी ने कहा, खूबसूरत सा आपने गीत सुना। आजरा साहिबा, आपकी जितनी भी दोस्तें हैं उन सब के हमने नाम किया था इस उम्मीद के साथ कि आपकी दोस्तों ने पसंद किया होगा। अब क्या है जी कि जो प्रोग्राम का आने वाला गीत है, समीरा साहिबा बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आप प्रोग्राम सुन रही हैं, आप साथ साथ हैं, और आपने भी कहा कि आपकी जितनी दोस्तें हैं उन सबके नाम भी गीत किया जाए, तो ये आने वाला जो प्रोग्राम का गीत है आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के नाम हम करते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद दिलाते चलें कि आज का हमारा जो हरूफ तहजी है वो है ते, दोबारा से टी, यानी कि ते से शुरू होने वाले ऐसे अल्फाज कुछ बताइए कि जो बहुत कम सुनने में आते हैं, और उनका अगर मफहूम या मतलब आपके इल्म में हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा ताकि मज़ीद हमारे इल्म में इजाफा हो। और अलामा इकबाल जो हैं वो मदनियत इस्लाम के हवाले से लिखते हैं, बताऊँ तुझको मुसलमान की ज़िंदगी क्या है, बताऊँ तुझको मुसलमान की ज़िंदगी क्या है, यह है नहायत अंदेशा व कमाल जुनून, तला है सिफत आफ्ताब इसका गरूब, यगाना और मिसाल ज़माना गुना गो, न इसमें असर रवां की हया से बेजारी, न इसमें असर रवां की हया से बेजारी, न इसमें अहद कोहन के फसाना व अफसू, हकाए के अबदी पर असास है इसकी ये जिंदगी है, नहीं है तिलिस्म अफलातू, अना से रिस्की है रूहुल कुड्स का जौक जमाल, अजम का हुस्न तबीयत, अरब का सोजे दरूं। ये अलामा इकबाल लिखते हैं इस हवाले से। और याद दिलाते चलें सामीन इकराम, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो नावल दस्तक ना दो है उसका 11वां बाब जो है वो आपके हम गोश गुजार करेंगे। इस वक्त समाप्त फरमा रहे हैं आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे, ऑनलाइन भी ये नशियात आप तक पहुंच रही हैं। तो लीजिए समीरा साहिबा, आपकी जानिब से आपकी दोस्तों के लिए खूबसूरत सा गीत।

जी सामीन कराम, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात आप समाप्त फरमा रहे हैं अपनी मेजबान उस्मा अशफाक के हमरा, और उम्मीद करते हैं कि अब तक के आपको गीत पसंद आए होंगे। ये गीत जो था ये समीरा साहिबा आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्त अहबाब के लिए था, इस उम्मीद के साथ कि आपने पसंद किया होगा। रफ़ी आपको बहुत पसंद है और तेज से आपने कहा कि जी थोड़ा सा सोचने का मौका दीजिए, हम आपको कुछ ही देर में दोबारा कॉल करके बताएंगे। तो बहुत शुक्रिया समीरा साहिबा, हम मंतज़र रहेंगे आपकी कॉल के, ज़रूर बताइएगा। आप हमेशा बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज लेके आती हैं जिससे हमारे भी इल्म में इजाफा होता है, हमारे सुनने वाले जो हैं उनमें भी उनके इल्म में भी इजाफा होता है। तो समीन कराम अब क्या है कि अब लीजिए एक और खूबसूरत सा गीत हम आपके नाम करते हैं, और उससे पहले वही बात है आपको याद दिलाते चलें कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में मोहतरमा अल्ताफ फातिमा का जो नावल है दस्तक न दो उसका 11वां बाब जो है वो हम आपके गोश गुजार करेंगे, तो उस हिस्से को भी ज़रूर सुनिएगा, यकीनन आप उसको पसंद करेंगे। ज़बान बड़ी खूबसूरत है, अंदाज़े बयान बहुत खूबसूरत है, और वो जो कहते हैं ना एक नॉस्टैल्जिक किस्म का ये नावल है कि जब इंडो पाक इकट्ठा था एक मुल्क था, बरसग़ीर पाको हिंद जब ये अलहदा अलहदा नहीं हुए थे तो ये उस वक्त में लिखा गया, उसके बाद फिर जब पाकिस्तान बन गया इंडिया अलहदा हो गया तब का क्या हाल अहवाल थे उस वक्त लोगों के, तो ये उसकी एक अक्कासी जो है ना उसकी तस्वीर कशी करता है ये नावल। तो देखिए सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा उस हिस्से को भी। लीजिए उससे पहले ये खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली $299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड फ्रॉम ओनली £99,
1: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
4: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
5: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन।
6: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
7: तूने पूछी है अमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है अमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, देखे एहसान जियां तेरा लहू गरमा दे, फुक्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे, फितना ए मिल्लत बेजा है अमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परिस्तार करे। तूने पूछी है अमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, देखे एहसास जियां तेरा लहू गरमा दे, फुक्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे, फितना ए मिल्लत बेजा है अमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। समीने कराम, ये अलामा मोहम्मद इकबाल का खूबसूरत सा कलाम अमामत के हवाले से, जो उन्होंने अपनी किताब ज़रब कलीम में तहरीर किया, उन्होंने लिखा और हमने आपके गोश गुजार किया। आप समात फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात, 1413 AM पे यही नशियात पहुंच रही हैं प्लस डैप के जरिए कुछ इलाकों में, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में ये आवाज़ पहुंचती है ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk के जरिए, और हमारा जो मोबाइल ऐप है, स्मार्टफोन ऐप, उसके जरिए भी आप हमारी नशियात से लुत्फंदोज हो सकते हैं। जी समीरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने के लिए, आपकी कॉल के मंतजर थे हम, और आपने बड़े ज़बरदस्त हमेशा की तरह अल्फाज से हमें नवाजा। आपने जो अल्फाज बताए वो थे समीरा साहिबा, परवाना, पैमाना, पैकर, पायल, पसी पर्दा, पुरकैफ, पुरनूर और पारा। लेकिन इत्तफाक की बात यह है कि आज अभी हम ते ही से अल्फाज जो शुरू होने वाले हैं वो हमें भी अभी ख्याल आया, हमने आपसे अल्फाज सुन लिए, अल्फाज लिख भी लिए, और ये सब तो पे से शुरू होने वाले हैं, प यानी फी से, लेकिन अभी हम ठी जो है, ते जो है, उसके अल्फाज जो हैं, आज दूसरा हफ्ता है, अगले

जो हफ्ते हैं समीरा साहिबा, ये पे से शुरू होने वाले अल्फाज हम करेंगे, लेकिन आपने जो कल अल्फाज बताए थे हमें, कल नहीं माजर चाहेंगे, गुज़िश्ता हफ्ते जो आपने तेज से अल्फाज बताए थे, हम उन्हीं को शामिल प्रोग्राम कर लेंगे। और बड़ा खूबसूरत सा आपने शेर भी सुनाया आज, बड़ी बात है जनाब समीरा साहिबा, आज तो आपका मूड बड़ा शायराना है। आपने सुनाया, तुम्हारी पलकों का प्यार पुरनूर सा लगता है, तुम्हारी पलकों का प्यार पुरनूर सा लगता है, दिल परवाना है मेरा तुम्हारे प्यार में जलता है। ये खूबसूरत सा शेर समीरा साहिबा आपने गोश गुजार किया और हमने तमाम सामईन के लिए पहुंचाया। और चलिए, इस शेर को ही शामिल हमने इसलिए भी खास तौर पे किया कि ये ते से शुरू होता है, तुम्हारी पलकों का प्यार पुरनूर सा लगता है, दिल परवाना है मेरा तुम्हारे प्यार में जलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और जरका साहिबा, आपने जो अल्फाज बताए थे वो आपने बताया, तजल्लियां, तितलियां, ताज, तौबा, तौहीद, तौरात, ये आपने अल्फाज हमें बताए ते से शुरू होने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश है जरका साहिबा। आप सामीन कराम, क्या वक्त है? जी हाँ, इंतज़ार में होंगे आपके जो नावल है दस्तक ना दो, अल्ताफ फातमा का लिखा हुआ, उसका आज 11वां बाब आपके गोश गुजार करेंगे। और मुख्तसर कहानी इसके बताते चलें कि ये दो नहीं माजरत तीन बहनें हैं, उनकी कहानी है गेती आरा, सौलत आरा और तीसरी इनकी बहन है जिसका नाम अभी आएगा तो हम आपको बता देंगे, नाम याद नहीं है तीसरी बहन का। बहरहाल उनकी वालिदा हैं, बड़ी सख्त मिजाज हैं, खसूसन अपनी बेटी गेती आरा के लिए। गेती आरा जो है वो अपने ही उसके असूल हैं, अपने ही पैमाने हैं और थोड़ी वो मुख्तलिफ है, ना सिर्फ शक्ल सूरत में बल्कि आदात अतवार में भी। बहुत शरारती है, अपनी अम्मा की बात ज़रा नहीं मानती, थोड़ी गुस्ताख कह लीजिए, और इसीलिए अम्मा बेगम को उस पर बहुत गुस्सा आता है अपनी इस बेटी पे। सौलत आरा जो है उसकी शादी होने जा रही है और वो मुगलई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये फैमिली वाले जो हैं बहुत बड़े जागीरदार भी हैं और जॉब वगैरह भी बड़ी अच्छी करते हैं, दो इनके भाई भी हैं साथ ही साथ, और बड़ा सा घर है वहाँ पे। एक चीनी लड़का जो है, ये उस ज़माने की बात है, उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान और इंडिया एक मुल्क हुआ करते थे, बरसगीर पाक व हिंद, तो उस वक्त वो जो सफदर यासीन है जिसे उर्फ़ आम में लियूचू कहा जाता है क्योंकि वो चाइना से ताल्लुक़ रखता है, चीनी लड़का है लेकिन मुसलमान है, तो वो वहाँ पर आया हुआ है रोजी रोटी के चक्कर में, जिस तरह से अब लोग इंग्लैंड का रुख करते हैं, यूके का या यूरोप का रुख करते हैं। तो एक ज़माना था कि जब लोग रोजी रोटी के चक्कर में बरसगीर पाको हिंद का जो है ना रुख किया करते थे, ज़रा सोचिए एक वो भी वक्त था। बहरहाल तो वहाँ पे वो है और वो अपने मुल्क को बहुत याद करता है, और उस वक्त जो था चीन वो अफीम में डूबा हुआ था, लोग जो थे वो बहुत कम हिम्मत थे, मेहनत नहीं करते थे, तो ये बेचारा अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आता है। और एक सांग उसका जो मालिक है, जूतों की दुकान पर वहाँ पे काम करता है, साथ ही साथ पेंटिंग भी करता है, और अपनी वालदा की और अपनी बहनों की बनाई हुई चीज़ों को यहाँ पे लाके वो गठड़ी पे अपनी साइकिल पे बेचता है, और बंगलों में जाता है, इनके बंगले पे भी चला गया, और वहाँ पे वो गेती आरा जूती वो उस दिन जामन के दरख्त पे थी चढ़ी हुई, जामन उतारने के लिए, और वहाँ से वो गिर गई, उनकी चोट लग गई बल्कि फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया उनको। और ये जो सफदर यासीन है वो वहाँ पे मिलने के लिए उस बच्ची को आता रहता है, उसकी वालदा को तो ये पसंद नहीं है लेकिन बहरहाल वो बहुत पसंद करती है इसको, क्योंकि वो उसके लिए खिलौने लाता है, उसको हंसाने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ इनकी चची जान हैं जो बेवा हैं, वो भी इनके साथ रहती हैं, जबकि चची जान की जो बच्चियाँ हैं वो अपनी दादी के यहाँ होती हैं। तो अब आगे 11वां बाब है। हेलो कुकू, वो उसके करीब स्टूल पर बैठ गया, वो जो नीम गनूदगी के आलम में लेटी हुई थी उसकी तरफ अफसुर्दगी से देखकर बोली, चुन चुन चाइना मैन। हाँ कुकू, तुमको गर्मी नहीं लगती इतनी धूप में आते हो? लगती है, फिर क्यों निकलते हो इतनी धूप में? मेरी मर्जी। बड़े लाट साहब, मेरी मर्जी। उसको इस चाइना मैन पर रश्क आ रहा था, काश वो भी सौलत आपा और अम्मा बेगम को धूप में फिरने पर, डांटने पर इसी तरह जवाब दे, हाँ फिर रही हूँ धूप में, मेरी मर्जी। चची जान गुसलखाने से बाल पोंछती हुई निकली और वो इन स्याह लांबे और लहरदार बालों को बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। बाल पोंछ चुकने के बाद उन्होंने कंघा लेकर आहिस्ता आहिस्ता बाल सुलझाना शुरू कर दिए।
वो कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ कुर्सी डाले बैठी थी। उनके जानुओं पर बड़ा रोएदार तौलिया फैला हुआ था और थोड़ी थोड़ी लिटें ले लेकर सुलझा रही थी। उनकी नन और दबीज उंगलियां गावदम कलाइयां आहिस्ता आहिस्ता बालों के दरमियान जुम्बिश कर रही थीं। एक घरेलू और सुघर औरत की तमाम तर शायस्तगी और नफासत के साथ इन दबीज और लंबी लंबी उंगलियों की हर जुम्बिश और लचक के पीछे एक पूरी तहजीब और एक कदीम रख रखाव और खानदानी आन बान मौजूद थी। आज इस आन और इस वक्त उस पर यह इंकिशाफ हुआ कि इंसानी जिस्म की हर हर जुम्बिश, उसके आजा की हर हरकत और पेचो खम में नस्लों और सदियों की तारीखें मुजमिर होती हैं। वो उसके वजूद से बेपरवाह और बेनियाज बैठी अपने बाल सुलझाती रहीं और फिर उनको आहिस्तगी से समेट कर पीछे की तरफ करके दुपट्टे के अंदर कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े इन्हमाक से कंघा साफ किया। टूटे हुए बालों को धीरे धीरे शहादत की उंगली पर लपेट कर छल्ला सा बनाया और मुंह के करीब लाकर आहिस्ता आहिस्ता थू थू करने के बाद गुसल खाने में चली गई। वहां से वापस आकर वो उसके करीब खड़ी हो गई। आ गए तुम, उन्होंने बड़ी नरमी से कहा। वो उनको करीब खड़ा देखकर उठ खड़ा हुआ। आज तुम जरा जल्दी नहीं चले जाओगे? तुम बोलेगा तो जरूर चला जाएगा। हाँ भाई, ये आज बिल्कुल नहीं सोई है, और फिर अगर शाम को अपनी माँ के आने के वक्त सोई तो वो नाराज होंगी कि दोपहर को नहीं सुलाया। अच्छा कोई बात नहीं, उसने खुश दिली से अपनी टोपी उठाई और गेटी से बोला, कुकू अब तुम सो जाओ, खुदा हाफिज। उसने प्यार से उसकी तरफ देखा। गेटी ने अपनी अफसुरदा आंखों से उसको देखा और आंखें बंद कर ली, मगर उसके कान चची जान की आवाज पर थे। इस सुनो तो, क्या हुक्म है? वो मुड़ा। ये जो तुम खिलौने, वो उसके खलूस के सामने इस किस्म की बात करते बौखला रही थी। क्या बात बोली? कुछ नहीं, हम कहते हैं बच्ची को ये खिलौने क्यों दिए? वो उनकी बात ना समझकर मुंह खोले खड़ा रहा। अरे भाई, बात यह है कि इसकी माँ ने ये रुपए दिए हैं खिलौनों की कीमत, ले लो, उन्होंने जल्दी जल्दी कहा। खिलौनों की कीमत? वो बुरा मान गया। अरे हाँ भाई, और सुनो, वो कह रही थी कि अब हम 2-3 दिन में प्लास्टर लगवा कर उसको घर ले जाएंगे, अब तुम्हारी तकलीफ करने की जरूरत नहीं। वो उनको बगौर देख रहा था। तुम हमारी बात समझे नहीं, देखो हम यस यस, हम समझता है, अच्छा बात है, ठीक है ठीक है, वो बहुत ही दिल गिरफ्ता आवाज में बोला और दरवाजे से निकल गया। वो सारी दोपहर सोने की बजाय मकर की ये पड़ी रही, और शाम को जब सब आए तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। उस शाम अब्बा मियाँ उसके लिए एक सोती जागती गुड़िया और मटकने वाली बिल्ली लाए थे। उसने खिलौनों को एक नजर देखा और मेज पर रख दिया। तकिए के नीचे से छोटा सा डब्बा निकालकर उसमें से जर्द कांच की बतख निकाली और अपनी आंखों के सामने कर ली, जिनमें मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। सबने मिलकर इसका जीता जागता खिलौना छीन लिया था। बंदर की नकल कैसे मजे में करता था और कितने मसखरे मसखरे मुंह बनाता था, इसीलिए तो उसका दिल रूठा रूठा हो रहा था। अब ये 12वां बाप शुरू हो रहा है। ये उनके घर की पहली शादी थी, फिर भी बहुत खामोशी से हुई थी। क्यों और किस वजह से, असल वजह कौन जान सकता था? अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ लोगों ने क्या साराइयां की थी। चची जान का ख्याल था कि भाभी ये नहीं चाहती हैं कि कुनबे और रिश्ते के लोग उनकी तय की हुई इस बेजोड़ शादी को देखें और तरह तरह की चेमगोइयों से लड़की को पहले ही बददिल कर दें। इसके बरक्स उनकी सास का ख्याल था कि दुल्हन ने तो शुरू से हर कायदा कानून तोड़ने की कसम खा रखी है। उनके बड़े बेटे ने अपनी लड़की की शादी उन्हीं के खानदान से की थी, और अब जहांगीर मिर्जा की लड़की की शादी भी इसी आबाई घर से होनी चाहिए थी, मगर वो तो रफ्ता रफ्ता खानदान और कुनबे की हर पाबंदी से आजाद हो रही हैं। भाई साफ बात तो ये है कि हम तो इस बेजोड़ शादी ही से खुश नहीं। लड़का अपने कुनबे का होता तो चलो ये भी हर्ज ना था, मगर खैर हम कौन बोलने वाले, उन्होंने चुपके चुपके चची जान से कहा था। हम तो बस मेहमान आए हैं। एक बात यह है कि इनका अपना कुनबा तो मुख्तसर है, एक भाई एक बहन, चची जान ने भी सरगोशी की थी।
خیر کنبہ جتنا چاہے انسان مختصر کر لے، یہ تو اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ توبہ استغفر اللہ، بس غیبت سے خدا محفوظ رکھے۔ انہوں نے چھٹ ظہر کی نماز کی نیت باندھ لی۔ پھر بھائی، ہمارے اپنے صاحبزادے کا یہ حال ہے کہ شکار سے فرصت نہیں، بیٹی کی شادی میں یوں گھوم رہے ہیں جیسے مہمان۔ انہوں نے سلام پھیر کر دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ ہاں یہ تو ہے، بھائی صاحب تو بس مہمان ہی طریق رہتے ہیں، کسی بات میں دخل نہیں دیتے۔ بڑی خوش نصیبی ہے بھابھی جان کی، چچی جان نے دوپٹے پر کرن ٹانگتے ہوئے کہا۔ ارے تو وہ مرنے والا ہی کب کسی بات میں دخل دیتا تھا، وہ تو کہو عمر نے ہی وفا نہ کی۔ ہمارے تو لڑکوں میں عادت ہی نہیں، خدا بخشے تمہارے ابا جان نے ہمارے سیاہ سفید میں کب دخل دیا۔ وہ سر جھکائے فیروزی دوپٹے کے کناروں پر سنہری کرن ٹانگتی رہی۔ ان کو شاید وہ مختصر لیکن آسودہ ساتھ یاد آ گیا تھا۔ اب تم یہی دیکھو کہ اس وقت ہاشمی کون سی دور بیٹھی ہے، ایک گھنٹے کا بھی تو راستہ نہیں۔ لیکن آج کئی دن سے سوچ رہی ہوں کہ جہانگیر سے کہوں کہ اس کو تو لے آؤ۔ اے واہ، ایسا کیا سوچنا، آپ بھائی صاحب سے کہیں تو، آپ کے تو سگے چچا کی پوتی ہیں وہ۔ ہاں دیکھو آج کہوں گی، شہریار بھی تو اس وقت کی گاڑی سے پہنچ رہا ہے، نہ ہو تو اسی کو لینے بھیج دیں۔ سوئی کا ڈور دانت سے کاٹ کر وہ بولی، شہریار کے کمرے میں تو بڑے بھائی صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اوپر والے کمرے میں بھابھی کے بھائی باوج اور بہن ہیں، شہریار کدھر ٹھہریں گے۔ اے لو، اس کا گھر ہے، لڑکوں کو کون سے کمرے درکار ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ہاشمی کے آنے کا ہوا تو پھر تم ان کو اپنے ساتھ ٹھہرا لینا۔ ہاں میں عصمت اور طلعت سے کہہ دوں گی کہ تم دادی اماں کے پاس سو جایا کرو۔ دیکھو دلہن، میری رائے تو یہی ہے کہ تم شادی کے بعد میرے ساتھ چلو۔ ہاں سوچتی تو میں بھی یہی ہوں، انہوں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اور جب شہریار آیا تو اماں بیگم سے ملتے ہی وہ سیدھا دادی اماں کے کمرے میں پہنچا تھا۔ اب تو ماشاء اللہ تم اپنے باپ کے برابر آ لیے ہو، انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ اور چچی جان تو اب میری کمر تک آنے لگی ہیں۔ وہ جھک کر ان سے گلے ملا۔ دبلی پتلی چچی جان نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ان کی جان سے دور، اب تو بالکل یہ لگتا ہے جیسے ان کے چچا سامنے آ کھڑے ہوں۔ سچ چچی جان، کیا میں واقعی چچا میاں سے اتنا ملتا جلتا ہوں، شہریار نے پوچھا۔ بالکل، سات قرآن درمیان وہی ہاتھ پیر اور ناک نقشہ ہے، دادی اماں نے افسردگی اور شوق سے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر میں ان کا بیٹا ہوا نا، وہ ان سے پھر لپٹ گیا، دیکھیے کہتا ہوں کہ مجھے اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ ارے تو میرا ہی تو بیٹا ہے، بناؤں کس طرح، انہوں نے اس کی پیشانی پر پیار کر کے بڑی مالکانہ نظروں سے دیکھا۔ اچھا اب اٹھلا چکے بہت، چلو اب ذرا مجھ سے بیٹھ کر بات کرو، کتنے کام تمہارے انتظار میں پڑے ہیں۔ بیک وقت دونوں نے مڑ کر دیکھا، ان کے پیچھے اماں بیگم تھی، ان کا چہرہ سرخ تھا اور ماتھے پر شکنیں نمایاں تھی۔ دیکھا بھابھی آپ نے کتنا شریر ہے، وہ کسیانی سی ہو کر شرمندگی مٹانے لگی۔ شریر وریر کوئی نہیں، بس اتراتے بہت زیادہ ہیں، چلو اٹھو، انہوں نے تحکمانہ انداز میں کہا، اور شہریار سر جھکا کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ جی سامعین کرام، یہ تھا باب نمبر 11 ناول دستک نہ دو کا، جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا کہ اب شادی جو ہے سولت آرا کی وہ قریب ہے بہن کی، لیکن بڑی سادگی سے ہو رہی ہے۔ کیوں، کس لیے؟ وہ اس لیے کہ سولت جو ہے وہ ابھی بہت کم سن ہے، اور جو اس کے ہونے والے دلہا میاں ہیں وہ بہت بڑے ہیں، کرنل رینک کے ہیں، ظاہر ہے عمر بہت زیادہ ہے، اس لیے شاید اماں بیگم جو تھیں سولت کی، انہوں نے بہت زیادہ مہمانوں کو اکٹھا نہیں کیا، لیکن گھر میں پھر بھی ظاہر ہے ان کی ساس آئی ہوئی ہیں، دادی اماں جو ہیں، اور ان کے بیٹے بھی وہاں پہنچ چکے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں جہانگیر مرزا وہ موجود ہیں، لیکن زیادہ تر وہ شکار پہ رہتے ہیں۔ تو یہ سامعین کرام، اب تک کا ناول کا یہ جو حصہ تھا ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ لیجیے اب ایک خوبصورت سا گیت آپ سب کے نام کرتے ہیں، سمیت کے ساتھ، کہ آپ اس گیت کو پسند کریں گے۔

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज

0: पल्स जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
5: Main banda nada hoon magar shukr hai tera. Main banda nada hoon मगर शुक्र है तेरा, रखता हूँ नेहा खाना लाहूद से पैवंद। एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवलाए ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखाराओ समरकंद। तासीर है ये मेरे नफसकी के खजा में, मुर्गान सहर खाम मेरी सोहबत में है खुरसंद। तासीर है ये मेरे नफसकी के खजा में, मुर्गान सहर खां मेरी सोहबत में है खुरसंद। लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने, जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रजामंद। सामीने कराम, ये शुक्र व शिकायत थी जनाब अलामा मोहम्मद इकबाल की अपने मालिक, अपने खालिक से, अपने खुदा से, कि मैं बंदा नादा हूँ मगर शुक्र है तेरा, रखता हूँ नेहा खाना लाहूद से पैवंद। एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखारा और समरकंद। तासीर है ये मेरे नफसकी के खजा में, मुर्गान सहर खां मेरी सोहबत में है खुरसंद। लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने, जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रजामंद। ये उनका आखिरी शिकवा था। पहले तो उन्होंने शुक्र अदा किया जो अल्लाह ताला ने सलाहियत काबिलियत अलामा मोहम्मद इकबाल को दी, उन्होंने उसको इस्तेमाल में लाए, उन्होंने पूरी कौम को जगाया, और लाहौर से लेके कहते हैं समरकंद तक, बुखारा तक उनकी वो आवाज़ पहुंची, जिसकी बदौलत जो है वो बहुत से लोग तो बेदार हो गए नींद से, गुलामी की नींद से, लेकिन ज़्यादातर लोग बेदार नहीं भी हुए। और यही उनको उस वक्त शिकवा था, जो उस वक्त के हालात थे उनकी बात हो रही है। बहरहाल सामीन कराम, आप समात फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। ऑनलाइन भी ये नशियात आप तक पहुंच रही हैं www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए, साथ ही साथ चंद इलाकों में प्लस डैप के जरिए हमारी नशियात से आप लुत्फानंदोज होते हैं। और सबसे बड़ी ये कि हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है हमारा फ़ोन का, आप उसके ज़रिए हमारी नशियात से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मुखातिब है आपसे आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आप पहुँचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक का इंतखाब आपको पसंद आया होगा, गीत आपके लिए मिले जुले पेश किए गए, आपकी फरमाइश पूरी की गई, आपकी डेडिकेशंस आपके लिए हमने प्रोग्राम में शामिल की रखा उनको। फिर साथ ही साथ क्या है कि ते से शुरू होने वाले हरूफ तहजी जो हैं उनका सिलसिला आज जारी है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला हुल अजीज ते से अगला लफ्ज़ है अलिफ बे पे ते जी, तो ते के बाद क्या आता है अलिफ बे पे ते ते ते आएगा, ते से बहुत बहुत बहुत कम अल्फाज होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में, आप भी तैयारी कीजिएगा। अभी तक समीरा साहिबा इस सिलसिले में शामिल हुई, जरका साहिबा आप इस सिलसिले में शामिल हुई, अजरा साहिबा आपने कहा कि आप सोच के बताती हैं, और इसके अलावा कौन, जी हाँ बस अभी तक आप ही लोग शामिल हुए इस सिलसिले में। आफ्ताब साहब आप तशरीफ लाए, जुनेद साहब आपने भी अल्फाज तो नहीं बताए, बस आपने कहा कि गीत लगा दीजिए तो हमने आपके लिए गीत पेश किया। अजरा समीरा साहिबा ने बताया था जी, पे से उन्होंने बता दिए अल्फाज, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, समीरा साहिबा ने गुज़िश्ता हफ्ते ते से शुरू होने वाले अल्फाज बताए थे, तमन्ना, तबस्सुम, तसव्वुर, तसव्वुफ, तकदीर, तिश्नगी, तस्लीम, तखय्युल, ताबीर, तजल्ली, तराना, तस्बीह, तासीर और तहम्मुल, ये अल्फाज आपने ते से बताए थे। जरका साहिबा, आज जो आपने अल्फाज बताए, आपने बताए तजल्लियाँ, तितलियाँ, ताज, तौबा, तौहीद आपने भी बताया, तौरात आपने बताया लफ्ज़, ये आपने ते से शुरू होने वाले अल्फाज हमें बताए, तो बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश है। मज़ीद अगर कोई इस सिलसिले में शामिल होना चाहें तो हमारे ज़खीरा अल्फाज में इजाफा कर सकते हैं, 01274306677 हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है, इसके ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं। और तेज से शुरू होने वाले जो चंद ऐसे अल्फाज जो अमूमन कम सुनने में आते हैं वो आप हमें बता सकते हैं, या अगर आपने फरमाइश करनी है किसी गीत की वो भी आप इस नंबर के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर आपने कोई डेडिकेशन है वो आप सुनना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही स्टूडियोज का नंबर है ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो का, 01274306677। तो लीजिए सामिने कराम, अब ये खूबसूरत सा गीत आपके हम गोश गुजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस गीत को पसंद करेंगे, सुनिएगा।

जी सामिनी कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना। कमर्शियल ब्रेक के बाद इकबाल की शायरी हमने आपकी गोश गुजार की और उसके बाद ये खूबसूरत सा गीत। चौधरी रुखसार साहब, आप शामिल हुए मैनचेस्टर से, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। कहते हैं ना, देर आए दरुस्त आए, तो ये अब समझ में नहीं आता कि लाइन में जो गड़बड़ है टेलीफोन लाइन में, वो आपकी जानिब से है या यहाँ के स्टूडियोज़ की जो लाइन है वो थोड़ी ख़राब है, क्योंकि आपकी बात सही समझ में नहीं आ रही थी। जो बात जितनी समझ में आई वो यही कि आपने बताया कि 12:30 बजे आपकी ब्रेक होती है, काम में मसरूफ़ थे, इसलिए आपने अभी आपने कॉल बीच में की अपनी ब्रेक के दौरान, उससे पहले 11:30 आपने बताया या जो भी, समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, आपने शायद कही कि पे और ते की शायद बात हो रही थी, सही बात समझ में, माजर चाहेंगे, हमारी कोताही शायद हमें समझ में नहीं आई। लेकिन हमारा ख्याल है कि अगर पे और ते की बात हुई है तो पे से हमने अल्फाज किए थे, अगर याद हो आपको हमने बताया था पापोश, पाप्यादा, पाबगिल, क्या होता है पाबजोला, जो पाकोब बताया था कि नाचने वाला जो है उसे कहा जाता है, पाताल की बात हुई थी, पारीना की बात हुई थी। तो आज जो लफ्ज़ है वो ते है, हरूफ तहजी त जिसे कहते हैं, शायद सुनने में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो ते से अल्फाज जो बताए हमने वो भी गोश गुजार किए। जो हमारे पास कुछ अल्फाज हैं ते से शुरू होने वाले, उसमें है तसलीस। तसलीस क्या होता है? ये मानने से एक लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है जैसे तीन हिस्सों में तकसीम करना, तसलीस। जैसे जो हमारे क्रिश्चियंस बहन भाई होते हैं, जिस तरह से उनमें से कुछ लोग जो हैं वो तसलीस पर, उनका अकीदा है कि तीन हैं मसीही मजहब के मुताबिक, खुदा की वहदानियत की तीन शाखें वो बताते हैं, तो उसे तसलीस कहा जाता है। उसके अलावा तजाहल, तजाहल का मतलब क्या होता है कि अनजान बनना या चश्म पोशी इख्तियार करना, नज़र फेर लेना, तजाहल मतलब जानते तो हैं लेकिन जान की अनजान बनना, उसे तजाहुल कहा जाता है। फिर है तजरीद। तजरीद का क्या मतलब है? तजरीद का आप हैरान होंगे सुन के, इसका मतलब होता है उरियानी, या फिर इसका एक और मतलब बनता है किताब में आराब या नुक्ते न लगाना, तो उसे कहते हैं तजरीद। ये नया लफ्ज़ है। एक है तजम्मुल, सुना होगा आपने। तजम्मुल का मतलब क्या होता है? जाहो जलाल, शान शौकत जो होती है उसे कहते हैं तजम्मुल। और एक है तहदीद। तहदीद का मतलब होता है सामीने कराम हद बंदी करना, पाबंदी किसी चीज़ की करना, तो उसे कहते हैं तहदीद। और एक है लफ्ज़ ते से ही शुरू होने वाला तहरीस, स्वाद पे ख़त्म होता है ये, तो तहरीस का मतलब होता है लालच या बहकावा, उसको कहते हैं तहरीस। तहरीस लालच या बहकावा उसका मतलब होता है। तहकीर, तहकीर अमूमन लोग जानते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब होता है किसी की, किसी से नफरत करना, किसी को नीचा दिखाना या किसी को हकीर समझना। तो ये ते से शुरू होने वाले चंद अल्फाज हैं जो आपके गोश गुजार हमने किए। और कौन कौन से थे? तजाहुल, तजाहुल का मतलब होता है चश्म पोशी इख्तियार करना, अनजान बनना। तसलीस, जो कि तौहीद की जैसे वाहदानियत की तीन शाखें बयान की जाती हैं मसीही अकीदे के कुछ गिरोहों के मुताबिक। तजरीद है उरियानी, किताब में आराब या नुक्ते न लगाना। तजम्मुल है, तजम्मुल का मतलब है शान और शौकत। और तहदीद का मतलब है पाबंदी। और तहरीस, तहरीस का मतलब है लालच या बहकावा। तो ये सामीने कराम चंद अल्फाज हैं जो आपके हमने गोश गुजार किए ते से शुरू होने वाले। अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम एक और कोई सिलसिला शुरू करेंगे इसी हवाले से, अगले किसी हरूफ तहजी का। बहुत शुक्रिया चौधरी रुखसार साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इतना वक्त निकालने के लिए। लीजिए ये खूबसूरत सा गीत जो है ये हम आपके नाम करते हैं, उम्मीद के साथ कि इस खूबसूरत से गीत को आप पसंद करेंगे।

लेकिन ऐसा है कि अभी जो है इतना वक्त हमारे पास है नहीं कि हम इसके बारे में जो है वो ज़्यादा बात कर सकें, क्योंकि तवज्जो तलब टॉपिक है, अहम टॉपिक है और बात हम चाहते हैं कि ज़रा इस पर तफसीली की जाए। इसलिए आज तो इस वक्त अब इस मौजू को हम नहीं छेड़ रहे, लेकिन काफ़ी अरसे से ये हमारे जहन में बात आती है। अब सस्पेंस भी पैदा हो गया होगा आप लोगों को कि क्या बात है, किस हवाले से बात है ये। अभी इसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। महबूब इलाही साहब तो बहुत अच्छे से जानते हैं जिन्होंने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई। आपसे गुजारिश ये है महबूब इलाही साहब कि मंडे के रोज़ अगले हफ्ते आप सोमवार को फ़ोन कीजिएगा प्रोग्राम के ज़रा आगाज़ में ही और याद दिला दीजिएगा। वैसे तो हम याद रखेंगे तकरीबन, लेकिन इंसान है, खता का पुतला है, भूल चूक जो है वो हो जाती है और वो काबिले माफ़ी होती है वैसे भी, लेकिन आप फ़ोन कीजिएगा और याद दिलाइएगा कि इस मौजू पर आज हम बात करें। तो इस मौजू पर बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों से ये मुतालिक है, ये कोई एक आध बंदे का मसला नहीं है, मामला नहीं है। और आप जानते हैं कि हम बग़ैर किसी का कोई नाम लिए, बग़ैर किसी को निशाना बनाए, जिसे कहते हैं ना पिन पॉइंट करना, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। बात तो बहुत से लोगों से मुतालिक है लेकिन अहम बात है, इस वजह से इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अजीज़ हम सोमवार के प्रोग्राम में बात करेंगे। और समीन उम्मीद करते हैं कि आज का इंतखाब जो था आपको पसंद आया होगा, आपने लुत्फ उठाया होगा, गीतों से भी आप अच्छे लगे होंगे, आप वो गीत और जो अलामा मोहम्मद इकबाल की खूबसूरत सी शेर व शायरी सुनाई आपको, जिंदा जावेद कलाम, वो भी आपको पसंद आया होगा। तेज़ से हमने आज अल्फाज किए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला हम अपना अगला जो हरूफ तहजी है उससे अल्फाज करेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिएगा और ज़रूर शामिल हो जाइएगा आप प्रोग्राम में। 01274306677 के ज़रिए प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं। आज भी जिन हजरात ने, जिन ख़वातीन ने कॉल की, बहुत शुक्रिया उनका, बहुत हम मशकूर हैं तहे दिल से आपके तमाम कॉलर्स के, खसूसी तौर पर जिन्होंने प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाया। और समीने कराम, इसके साथ ही आज की जो महफिल है उसे समेटने की हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे इस दुआ के साथ कि जहां कहीं भी आप रहें खैर व आफियत के साथ रहें, और इंशाल्लाह ताला अजीज अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते हमारी आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह हामी व नासिर, अल्लाह हाफिज़।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के

0: ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है
1: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्राडफोर्ड BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
0: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
1: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
0: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
1: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
0: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
1: 07548419678।
0: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team.
3: You're listening to 01274 Bradford Asian Radio, 1413 AM.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स जी हाँ छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए

0: हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 4244453 महमूद रिजवी
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें फेसबुक पर मौजूद हैं और उनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और आज हमारी बज़्म में तशरीफ लाना चाहें तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। हम दिल की तमाम तर गहराइयों से आपको गजल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहेंगे।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो अहबाब तशरीफ ला चुके हैं उनके इस्माए ग्रामी आप तक पहुंचा दें। रियासत साहब हडर्सफील्ड की फजाओं से, वकार साहब तशरीफ लाए हैं वेकफील्ड से, रियाज साहब ब्रेडफोर्ड की इस हसीन वादी से, सुमेरा बिटिया हमारे दरमियान मौजूद हैं ब्रेडफोर्ड 3 से, और भगत सिंह साहब लीड से तशरीफ लाए हैं। रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा की झलक अभी हमें पेज पर नजर आई थी, लेकिन मैसेज अब तक नहीं मिला है, लेकिन लगता यह है कि वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इसके अलावा मेरे बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से लिसनर जो बहुत मोहब्बत चाहत और प्यार के साथ तशरीफ लाते हैं, और आप हैं हमारे मोहतरम चौधरी रुखसार अहमद साहब, जिन्हें हम दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम, वेरी गुड आफ्टरनून एंड सेम टू यू सर, और कैसे हैं आप? हमारे लिए जो तोहफा आप लाए हैं आगाज प्रोग्राम में, इसकी तो आज तो बहुत ज़रूरत थी, इसलिए कि आज गर्मी ज़्यादा है और दिनों की नस्बत, और ये आपके हसीन फूल एक मिनट दीजिए मुझे, मुझे मुझे दीजिए, हाँ ये एक मिनट भाई, ये बैग रखा है यहाँ, ए यहाँ पर सजा देते हैं। इसमें आपकी मोहब्बत की खुशबू और फूलों की खुशबू ने मेरे पूरे स्टूडियो को महका दिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने जमान में रखे। जिन अहबाब के मैंने नाम लिए हैं उन सब के जानिब से तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा आया है, जो हम आपकी नजर कर रहे हैं, आपके हवाले कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि आज हमारे वकार मियां वेकफील्ड में मौजूद हैं और वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं वो घर ही से रहकर करेंगे। कहते हैं कल रात स्कॉटलैंड से आते में बहुत ज़्यादा ताखीर हो गई थी, सो मैंने ये फैसला किया कि आज इत्मीनान के साथ घर से बैठकर काम करूँगा। बिल्कुल सही किया, इसलिए कि जब थकन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फैसले ज़रा गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर सुकून के साथ किए जाएं तो वही फैसले आपकी तरक्की और कामयाबी का बाइस बनते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी मीटिंग अटेंड करें, और साथ साथ आपसे यही दरख्वास्त है कि अहले खाना के हमराह हमारे प्रोग्राम से भी लुत्फ़ानंदोज़ होते रहें। आपने बताया है कि अभी बच्चे 3 बजे तक आ जाते हैं, 2:30 से 3 के दरमियान घर आ जाते हैं, तो फिर हमारी बैठक होती है। अल्लाह इस बैठक को सलामत रखे, अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को हमेशा हिज़्ज़ो अमान में रखे। आपका तोहफा आपकी नज़र करते हैं ताकि आप इत्मीनान के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी मीटिंग्स अटेंड कर सकें। अल्लाह आपको कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। आपका तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए। आमद का बहुत शुक्रिया।

0: और दोस्तों ये गीत था हमारे वकार मियां के लिए जो आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और गुडलक भाई हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। कमर्शियल का वक्त हुआ जा रहा है, कमर्शियल के बाद हम एक बेइंतहा हसीन गीत के साथ हाजिर रहेंगे जिसे हम नजर करेंगे मैनचेस्टर सिटी से आए हुए हमारे खूबसूरत मेहमान जिन्होंने हमारे स्टूडियो को महका दिया है, चौधरी रुखसार अहमद साहब की नज़र। आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहत, आपका प्यार सर आंखों पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में, दुनिया के चार कोनों में माशाल्लाह एक कसीर तादाद मौजूद है हमारे नादीदा लिसनर्स और सोते मुजाहिदों की जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। आपको भी हम दिल की गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं। ये ना समझिएगा कि आप सुनते रहते हैं और हम आपको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, नहीं भाई, हमारे लिए तो ये बाइस इज्जत और बाइस तौकीर है कि आप हजारों मील दूर और सात समंदर पार बैठकर भी हमारे साथ मौजूद होते हैं और साथ निभाते हैं 5 बजे तक। बहुत काबिल तारीफ बात है। अल्लाह आप सबको सेहत से रखे, अपने हिज्जमान में रखे और नजर बद से बचाए हमारे उन तमाम लिसनर्स को जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं।
1: Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रेडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
0: दोस्तों, इससे पहले कि हस्बे वादा हम आपको मैनचेस्टर के सनती शहर लेकर चले, मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं। मुझे याद आता है जब भी रुखसार हमारे तशरीफ लाते हैं, अल्लाह ने सलामत रखे, तो मुझे वहाँ के एक रेडियो था जो अब ख़त्म हो गया, एशियन साउंड रेडियो, वहाँ मैंने तकरीबन 9 बरस प्रोग्राम किए हैं, उसके इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक तकरीबन 9 बरस। तो मेरा बाकायदगी के साथ मैं यहाँ से ब्रेडफोर्ड से प्रोग्राम करने मैनचेस्टर जाता था, और मैनचेस्टर 3 घंटे का मेरा प्रोग्राम होता था, और प्रोग्राम का नाम यही था, जहाँ से भी किया है, गज़ल उसने छेड़ी। तो वो ज़माना मुझे याद आता है, जिस ज़माने में मैनचेस्टर बड़ी बाकायदगी से, अब तो वैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बेटी वहीं होती हैं मैनचेस्टर में, तो जाना आना तो लगा रहता है, लेकिन साहब बहुत मसरूफ़ शहर है रुखसार साहब, बहुत मसरूफ। बहरहाल मैनचेस्टर की हसीन यादें हमेशा मेरी ज़िंदगी में कीमती सरमाए के तौर पर मेरे हमराह मौजूद रहेंगी। 9 बरस कम नहीं होते, 9 बरस मेरा बाकायदगी से वहाँ एशियन साउंड रेडियो पर जाना रहा। अब तो एशियन साउंड रेडियो ख़त्म हो गया है, अभी अभी तशरीफ लाए हैं परदेसी मजीद साहब, और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपका, सबको मेरा सलाम और ढेरों दुआएं, और आपके लिए खुसूसी दुआएं, ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआएं मांगता हूं। शकील साहब, रिजवान साहब, चौधरी रुखसार अहमद साहब को मेरा सलाम, और नवीद साहब को भी मेरा सलाम कह दें। मियां, मैंने हवा के दोष पर आप के अहबाब तक आपका नाम पहुंचा दिया है, सलाम पहुंचा दिया है, और कहते हैं मेरा सलाम और ढेरों दुआएं पहुंचा दीजिए, हमने पहुंचा दी हैं, अल्लाह आपको भी सलामती के साथ रखे, और आपकी तबीयत पिछले दिनों से कुछ नासाज थी, मुझे ज़रूर बताइए कि अब माशाल्लाह उसमें कितनी बेहतरी आई है। और जो गीत आपने सुनना चाहा है वो मैं अभी लिख लूँगा, क्योंकि मुझे जाना है मैनचेस्टर, बहुत दिन हो गए गए हुए, और ज़रा मुलाकात करनी है चौधरी रुखसार अहमद साहब से, तो मुझे इजाज़त दीजिए, इसलिए कि बहुत दिन हुए हैं मैनचेस्टर आए हुए, तो हमने सोचा आज चौधरी साहब के पास होके आते हैं, चलते हैं उनके पास, और उनके लिए हम अपनी पसंद का गीत लेकर चल रहे हैं जो मेरे दिल के बेइंतहा करीब है। मैंने आपको बताया कि अपने दोस्तों के नाम वो चीज़ हमेशा नज़र करनी चाहिए जो आपके दिल के करीब हो, ये नहीं कि गैर ज़रूरी चीज़ है, और क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं करते या आपको पसंद नहीं है तो आपने कहा चलो दोस्त को दे दो, नहीं, वो गलत है। दोस्तों को तोहफा देने के लिए यहाँ से जो चीज़ आपको दिल से पसंद हो वो उनके नाम कीजिए। और एक खूबसूरत शेर याद आ गया रुखसार, जो हम आपके नाम कर रहे हैं, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। और अब वो गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे बड़ी अजीज लिसनर और खूबसूरत लिसनर चौधरी रुखसार अहमद की नज़र कर रहा हूँ। अहमद का बे इंतहा शुक्रिया। परदेसी मजीद हम आपका गीत अभी लिख लेते हैं और जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे और ताखीर भी नहीं करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान में इंटरनेट का जो सिस्टम आपने बताया कि बहुत गड़बड़ रहता है, तो हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे।

दोस्तों, हमारी बिटिया सुमेरा थी, कह रही है कि मैंने अपनी तमाम कजन्स को, ज़्यादा नहीं, 14 कजन्स हैं, ओनली 14, होशियार कर दिया है कि अगला गीत आपके नाम होगा। हमने सुमेरा से कहा था मुझे कंफर्म कर देना, तो हम आपका गीत ज़रूर आपकी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम मिडिल्स बरा में लगाएंगे। मिडिल्स बरा की रहने वालियों, तुम्हें मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। कैसी हैं आप लोग? बेटा, आप सबके साथ हमेशा हमारी दुआएं हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारी बहुत ही प्यारी लाडो, जो बहुत ही इज्जत और एहतराम से हमें नवाजती है, और बावर्ची खाने की रानी, आज उन्होंने बता रही थी अभी गर्दन दा शोरा मनाया है, और बघारे चावल हैं, और साथ ही साथ कह रही हैं रात के लिए कढ़ी भी बनाई है। कढ़ी का सुन के मुंह में पानी आ गया। लड़की, ऐसी बातें ना किया करो, हमें प्रोग्राम करने दिया करो। वाह वाह, ये तो शेर हो गया। ऐसी बातें ना

आदाब आदाब। और दोस्तों आइए हम चलते हैं आपको लेकर ज्यादा दूर नहीं मिडिल्सब्रा, जहां हमारी प्यारी सी बिटिया सुमेरा ब्रैडफोर्ड 3 से इनका तोहफा हम इनकी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें खुशामदीद कहना है एक बहुत ही मारूफ मकबूल शख्सियत हिंदुस्तान के मरदम खेज शहर से, अमरोहा से। और ये क्यों मारूफ है, ये बहुत खूबसूरत मुसन्निफ है, उनकी कई किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। हुमायूं परवेज साहब हमारी बज़्म में तशरीफ लाए हैं, और जो तोहफा हमने अभी नज़र किया था हमारे रुखसार के लिए, उसे आपने बेइंतहा पसंद फरमाया। ये आपकी मोहब्बत है, ज़ाहिर है अपने खूबसूरत लिसनर को तोहफा देना था तो हसीन तरीन तोहफा होना चाहिए। और ये तोहफा जो था ये तो सदाबहार गीत है। आप भी अगर कोई ख़ास गीत सुनना चाहें हुमायूं परवेज साहब तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे। पहले आपने तोहफा भी पसंद फरमाया और अस्सलामु अलैकुम कहा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हम मुंतज़िर हैं कि आप कोई गीत बताएं और हम उसे आपकी नज़र करें तो हमें बेइंतहा दिली खुशी होगी। सात समंदर पार से आप तशरीफ़ लाते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं तो हमारे लिए बाईस एजाज़ होगा कि हम आपकी पसंद का गीत आपके हवाले करें। तो अब चलते हैं मिडिल्सब्रा में रहने वाली प्यारी प्यारी हमारी बिटिया सुमेरा की कजन्स के तोहफे की जानिब, ठीक है। और उसके बाद मुलाकात होगी आपसे और हम आपको लिए चलेंगे खारियां गुजरात पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं परदेसी मजीद साहब और सुनना चाहते हैं खूबसूरत गीत। मजीद आप जरूर बताइए हमें, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे सुनने वालों को आपकी फिक्र रहती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो चलते हैं मिडिल्सब्रा और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सुमेरा और इनकी कजन्स के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग यूं ही कायम और दायम रखे और नजरें बद से बचाए। प्यारी बच्चियों, तुम्हारा तोहफा मिडिल्सब्रा में लेकर आ रहा हूँ, कबूल करो।

0: Number 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को

0: आपकी जरूरत है।
1: आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
3: दोस्तों, ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात हैं जो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन इसे सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारी ये नशियात आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तक भी पहुंच रही हैं। हम अपने तमाम ही सामईन और नाजरीन को जो इन शहरों में हमारे प्रोग्राम से मुस्तफीज हो रहे हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम गजल उसने छेड़ी की जीनत बनाना चाहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677।

और दोस्तों वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार का। और इस सेगमेंट के लिए जो गीत मुंतखब किया है ये हमारे बड़े सादा दिलकश और मासूम लिसनर हैं और इस लिसनर का नाम है मोहम्मद अयूब चौहान और आप ओल्डहम से तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं। सो याद रखिए कि आज के इस सेगमेंट में मेरी मदद की है हमारे सादा मासूम दिलकश और प्यारे से लिसनर मोहम्मद अयूब चौहान साहब ने यह गीत मुंतखब किया है। 1970 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था अफशां। अफशां में हीरो और हीरोइन के जो फराइज अंजाम दिए थे वो था वहीद मुराद और शबनम का नाम, दोनों बड़े नाम थे। आप जानते हैं कि टर्न सेटर हैं जनाबे वहीद मुराद मरहूम, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, बहुत नौजवानी में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। बहुत सी साजिशों का जाल इनके गिर फेंका गया और कहा यह जाता है कि इनकी मकबूलियत और शोहरत और इज्जत से लोग बहुत घबरा गए थे कि अल्लाह ताला ने इस नौजवान को न सिर्फ एक हसीन, लाखों दिलों की धड़कन था, हसीन सूरत और शक्ल से नवाजा था, इनका हेयर स्टाइल इस कदर मकबूल था कि नॉर्मली 1.5 से 2 रुपए में लोग बाल कटवाते थे उस जमाने में, जिस जमाने में वहीद मुराद का उरूज था। लेकिन अगर आप जाकर वहाँ पर कह दें जुल्फ तराश की दुकान पर कि साहब हमें वहीद मुराद का, बाकायदा तस्वीरें इनकी लगी होती थी और लोग देख के कहते थे ये वाला कराना है, तो उस जमाने में 8 रुपए लिया करते थे जुल्फ तराश जो थे, और वो कहते थे कि हमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी उनके स्टाइल बनाने में। लेकिन उस स्टाइल तक, और फिर बाद में मैं क्या बताऊँ आपको क्या ज़माना था वो, कि बाद में शीशा लेके, लकड़ी का बड़ा शीशा होता था जुल्फ तराश के पास, मैं नाई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा इसलिए कि ये लफ्ज़ ऐसा है, क्यों करें इस्तेमाल, आपको पता है कि वो शीशा जो था लकड़ी का बना हुआ होता था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता था, उससे वहीद मुराद के बैक से कैसा लगता था वो दिखाते थे, फिर राइट से कैसा लगता था वो दिखाते थे, फिर जो पार्टीशन होता है जिसे मांग कहते हैं वो दिखाते थे, फिर जो उनकी लट यूं आके पड़ती थी वो दिखाते थे, और जब 8 रुपये वसूल करते थे। बहुत कम लोगों को शायद इसका इल्म होगा कि हिंदुस्तान के मारूफ गुलोकार मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनकी आवाज़ का नेमल बदल आज तक नहीं मिल सका और जो खला वो छोड़ गए हैं उस ताहयात पूरा मैं समझता हूँ कि पुर नहीं हो पाएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब का भी ताल्लुक लाहौर के एक जुल्फ तराश ख़ानदान से था और उन्होंने कभी इसे छुपाया नहीं, हमेशा बताया कि साहब मेरा ताल्लुक जो है जुल्फ तराश ख़ानदान से है, क्योंकि ये चीज़ें तो आदमी अपने घर की रोज़ी रोटी चलाने के लिए करता है, पेशा हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला को मेहनत करने वाले लोग पसंद हैं, वो ये नहीं देखते कि बर्तन धोकर कमाते हैं या कोई और काम कर कमाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में कोई काम करो, गाड़ियां धो रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, फखरिया बताइए हम गाड़ियां धो रहे हैं। आपको पता है कि मैं 19 ईयर्स तक मैंने टीचिंग की है और हजारों मेरे शागिर्द हैं, ए लेवल जिन्हें मैंने कराया है और बहुत, खैर छोड़िए, आज भी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, अल्लाह उन सबको सलामत रखे, मेरे शागिर्दों को इस कदर एहतराम से मिलते हैं, घर मिलने आते हैं, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, बड़े बड़े ओहदों पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ाए हुए बच्चे और बच्चियाँ, मैंने दोनों को पढ़ाया है और मुझे ज़ाहिर अब उम्र नौजवानी है मेरी, मैं कभी कभी नाम
जब से मुझे आर्द्रा कैंसर का हुआ था, उसके बाद मेरी 30 केमोथेरापीज हुई। उसके बाद मेरे साथ एक मसला ये हो गया है, आप यकीन करेंगे मुझे अपने मोबाइल का नंबर याद नहीं है। मैं अपनी बेगम की मदद से अगर कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई नंबर बताइए ज़रा इनको, मेरा नंबर क्या है। तो ये उन केमोथेरापीज का असर है। तो एक उसका ये असर है, दूसरा ये है कि शक्लें और चेहरे याद रहते हैं, नाम जहन से निकल जाते हैं। आवाज़ों का ताल्लुक, क्योंकि 50-55 बरस से है तो आवाज़ें नहीं भूलता मैं। एक बार आप मुझसे फ़ोन पर बात कर लीजिए, दोबारा जब आप फ़ोन पर बात करेंगे तो मैं फ़ौरन कहूँगा अच्छा चौधरी रुखसार अहमद साहब बोल रहे हैं, कैसे हैं यार, ये आपने नोट किया होगा हमारे जो लिसनर हैं। तो बात ये हो रही थी कि वहीद मुराद का उरूज था, फिल्म उनकी अफसाही 1970 का ज़माना था, उनका साथ निभा रही थी मशहूर फिल्म स्टार शबनम। एक गीत ने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े, जिस गीत पे निगाह आज मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब ने निशानदही की है तो मेरी भी गई। और वो गीत था खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए, बड़ा मकबूल हुआ। इस गीत को तहरीर किया था तस्लीम फाजली ने और मौसीकी से इसे नाशाद ने संवारा था। बात है 1970 की। मैं दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब का कि इस कदर खूबसूरत गीत आपने हमारे सेगमेंट के लिए मुंतखब किया। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो तय ये हुआ मुख्तसरन, मैं आपको बता रहा था कुछ

तो हमारे वो जो शागिर्द हैं, अल्लाह उन सबको सलामत रखे और सेहत से रखे, जो हमें आज भी उतनी ही इज्जत और मोहब्बत से नवाजते हैं। दोस्तों, मैं 19 साल टीचिंग में NEAB का भी एग्जामिनर रहा और लंदन बोर्ड का भी, और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। 19 साल कैसे गुजरे ये इल्म नहीं है। उसके बाद मुझे इल हेल्थ रिटायरमेंट लेना पड़ी। इसके साथ रेडियो का सिलसिला भी होता था। सुबह मैं पढ़ाता था और शाम को अपना रेडियो BBC से मैं मुंसलिक रहा बहुत तवील अरसे तक। खैर, बातें तो होती रहेंगी। आज के सेगमेंट का पहला तोहफा आवाज़ है खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब की। अल्लाह ताला खान साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफिरत फरमाए। फिल्म अफशां, सन 1970। गीत के बोल तहरीर किए तस्लीम फाजली ने और मौसीकी से संवारा नाशाद ने। आइए सुनते हैं वो शोहरा आफाक गीत, पहले खान साहब मेहंदी हसन खान साहब की आवाज़ में।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं एक शायर एक गीत दो फनकार। आज की फिल्म है अफशां, गीत मुंतखब किया है मोहम्मद अयूब चौहान साहब ने और इसके सितारे हैं वहीद मुराद और शबनम। दोस्तों आपको मैं बताऊं कि वहीद मुराद जिन्हें चॉकलेटी हीरो के नाम से जाना जाता था, लाखों लड़कियों की दिलों की धड़कन और उनका आइडियल थे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में हम बाज़ दफ़ा अपने बहुत ही कीमती फनकारों को अपने अजीब रवैये से दिल बर्दाश्ता कर देते हैं और यही कुछ वहीद मुराद के गिर्द साजिशों का एक अजीब किस्म का जाल बुना गया और उन्हें फिल्मों से तकरीबन दूर कर दिया गया। वहीद मुराद पान बहुत शौक से खाते थे और बहुत ज़्यादा खाते थे। कहा यह जाता है इस उकदे पे से, इस राज से आज तक पर्दा नहीं उठा है कि उन्हें किसी उनके बहुत ही करीबी दोस्त ने, जिनका नाम आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका और ना कभी मालूम होगा, पाकिस्तान में तो पता नहीं कितने बड़े जुर्म हैं जिन पर पर्दे डाल दिए जाते हैं। आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ हूँ और वो राज हमेशा के लिए राज ही रह जाता है और यही एक राज इनके साथ भी, इनका एक राज आज तक, अगर शायद कभी ज़िंदगी में किसी ने अपनी बेगैरती और कमज़ोरी को महसूस किया और अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा तो शायद ये राज खुल जाए। बसूरत दीगर बरसों हो गए वहीद मुराद को इस जहान फ़ानी से कूच किए हुए, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कहा यह जाता है कि उन्हें उनके किसी दोस्त ने पान ला के दिया और उन्होंने कहा कि वही साहब आप पान बहुत शौक से खाते हैं, ये पान बनवा के लाया हूँ और आप यकीन करें ये मारूफ तरीन दुकान का पान है और ये बहुत महंगा है। उन्होंने कहा मियाँ कितना महंगा है, उस ज़माने में हालात वहीद मुराद ऐसी बात नहीं थी कि खुदा न करे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, मेंटली टॉर्चर थे, लोगों के रवैयों से साजिशों से परेशान थे और कहने लगे कि ये तकरीबन 250 रुपए का एक पान है। ये बात है कोई 25-30 साल पहले की, बल्कि उससे भी ज़्यादा की शायद होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और कहा यह जाता है कि उस पान के खाने के बाद फौरन उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो गई। फैमिली भी उनके साथ नहीं थी, अपनी मुंह बोली बहन के घर वो गए हुए थे जो उनका बहुत ख्याल रखती थी, और फैमिली शरीक भी नहीं हुई उनके जनाजे में, क्योंकि जब उरूज पे आदमी होता है तो सब साथ होते हैं और जब जवाल की तरफ आता है तो जो लोग साथ होते हैं वो आपके सच्चे दोस्त और सच्चे प्यार करने वाले होते हैं। एक मुंह बोली बहन ने उनका साथ निभाया और इस कदर साथ निभाया कि वो उसी के यहाँ एक कमरे में पड़े रहते थे, वहीं उन्हें वो पान पेश किया गया। फिर उसके बाद तो अफवाहों के अंबार लग गए, किसी ने कहा कि वहीद मुराद ने खुदकशी कर ली है, किसी ने कहा कि वो नशे के आदी थे, पान में नशा था, बहुत ज़्यादा खा लिया उसकी वजह से। लेकिन ये राज आज तक राज है, बस आप और हम सब मिलके इस अजीम फनकार को जिसे दुनिया वहीद मुराद के नाम से जानती थी, हम खराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। और उनकी फिल्म अफशां का ये दूसरा फनकार है मलकए तरन्नुम नूर जहां, जो इसी खूबसूरत गीत को आपकी नजर कर रही हैं।
1: यानी आप इस मामूली हार से मोहब्बत की बाजी जीतने के ख्वाब देख रही हैं?
2: अरे आप नहीं जानती अफशां बेगम, ये हार बड़े काम की चीज है। अगर होने वाला दामाद खुसर को पहनाए तो दुल्हन पाए, अगर बाबू मैनेजर को पहनाए तो तनख्वाह बढ़ जाए, अगर आवाम लीडर को पहनाए तो कुर्सी पाए, और अगर लड़का लड़की को पहनाए,
1: और अगर लड़की लड़के को पहनाए तो
2: बैठ जाओ, बैठो, समझाता हूँ। अगर लड़की लड़के को हार पहनाए ना तो ये हार नहीं रहता, बरमाला बन जाता है, और बरमाला नर्म नाजुक फूलों की वो जंजीर है जो मोहब्बत बंधन का एक हार होती है। मुझे जंजीर पहनाने से पहले ये सोच लेना कि इस जंजीर का एक सिरा हमेशा तुम्हारे पैर में भी रहेगा, और फिर तुम्हारे लबों पर सिर्फ मेरा नाम रहेगा।

0: आशा, इसके साथ ड्रामा देखने आर्ट काउंसिल जाना।
1: सॉरी अम्मी, आज तो मैं बहुत मसरूफ।
0: भाई ये मसरूफियत का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद है। तुम सुबह जाते हो, रात गए वापस आते। तुम्हें कुछ वक्त नौशाबा को तो देना ही चाहिए। वो तुम्हारी चचा की लड़की नहीं, मेरी होने वाली बहू भी है।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या पसंद थी अयूब चौहान साहब आपकी, बहुत खूबसूरत इंतखाब था। अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। शायर थे तस्लीम फाजली, गीत उन्होंने तहरीर किया था, मौसीकी नौशाद की थी और आवाज़ों का जादू जगा रहे थे हमारे खान साहब मेहदी हसन खान साहब और मलका तरन्नुम नूरजहां। उम्मीद है कि आपको आज का सेगमेंट पसंद आया होगा। अजहर साहब, मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूं। अजहर साहब शदाई हैं खां साहब मेहंदी हसन खां साहब के, और तशरीफ लाए हैं, हमारी बज में मौजूद हैं और आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा पेश कर रहे हैं। चलते हैं कमर्शल की जानिब और उसके बाद आपसे मुलाकात होती है और फिर कहाँ जाना है ये मैं आपको आके बताऊंगा, क्योंकि वक्त हुआ है कमर्शल।
3: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
9: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
8: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
8: फर्स्ट चॉइस
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644।
10: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्रैडफोर्ड BD8 ATY।
9: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
11: बालियां अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
9: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
9: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
9: 33 Wetley Lane ब्रैडफोर्ड 01274201679।
11: सेफ राइडर UK।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
2: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अब हम आपको लिए चल रहे हैं हिंदुस्तान के मर्दम खेज शहर अमरोहा, जहां मौजूद हैं हिमायूं परवेज साहब और हमारे प्रोग्राम की जीनत व तौकीर बढ़ा रहे हैं। अपने अहल खाना के हमरा मौजूद हैं, उनका तोहफा उनकी नज़र करते हैं। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे रियासत साहब के तोहफे की जानिब। अजहर मियाँ, आपका तोहफा भी आपकी नजर करेंगे, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं। चलते हैं अमरोहा और इस खूबसूरत शेर के साथ कि दर्द में लज्जत, फुगा में सोस, तन्हाई में कैफ, क्योंकि ये अहले ज़ौक हैं, इनकी नजर कर रहा हूँ। दर्द में लज्जत, फुगा में सोस, तन्हाई में कैफ, जब्त गम से इश्क में सो हुस्न पैदा हो गए। दर्द में लज्जत, फगा में सोस, तन्हाई में कैफ, जब्त गम से इश्क में सो हुस्न पैदा हो गए। और आपका तोहफा लेकर हाजिर है हिमायूं परवेज साहब, आपको और आपके अहल खाना को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और नजरे बद से बचाए। तोहफा कबूल कीजिए।

0: दोस्तों मैंने सही किया, बहुत देर से टेलीफोन की बत्ती जल बुझ रही थी और मैं समझ रहा था कोई बहुत बेताब है, और वो बेताब सी शख्सियत थी, सादा और दिलकश शख्सियत के मालिक मोहम्मद अयूब चौहान साहब, जिनका मुंतखब गीत आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बना, एक शायर एक गीत और दो फनकार में। आइए जरा पहले उनसे मिल लेते हैं, बाद में बाकी लोगों से निमटते हैं। और शकील भाई आपका तोहफा आपकी नजर करेंगे, फिक्र ना कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जफर भाई, आप ठीक हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ, हमारे सुनने वालों ने बेइंतहा पसंद फरमाया है आज का।
1: वो फिल्म मैंने पाकिस्तान में देखी थी, मीरपुर में सिनेमा का एक उसमें देखी थी।
0: कौन से सिनेमा में?
1: सेवेंटी की बात है, मेरा सेवेंटी में देखी थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: वो उसका फिल्म सुनने का नाम मुझे पता है, तो उसमें देखी थी, मुझे भी अच्छी लगी थी। वो खासतौर पर जो है ना तारिक अजीज का काम उस फिल्म में मुझे बहुत अच्छा लगा था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: इसलिए मुझे सारी कहानी याद है।
0: जी
1: वैसे जो दो दिन पहले खाया,
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
1: वैसे कुछ साथ सुना देते हैं।
0: जी जरूर।
1: तो गाना भी लिख लीजिए, फिल्म का पार्टी सॉन्ग है, हो सके तो मेरा, हो सके तो मेरा एक काम करो,
0: अरशद का गाना,
1: फिल्म जबरदस्त कर रहा
0: है। हाँ हाँ, हो सके तो मेरा एक काम करो,
1: तो मैं कुछ साथ सुनाता हूँ।
0: जरूर सुनाइए।
1: कभी कहा मैं किसी से
0: मोहम्मद अयूब चौहान, वाह
1: जाने कैसे खबर
0: हो गई जबानी को,
1: दुआ बाहर की मांगी तो फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरी आंसू आने को,
0: दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशा। बहुत खूबसूरत इंतखाब।
1: मेरी बहार पे पतंगों का फूल होता है, शमा न लाया करे जलाने को,
0: शमा न लाया करें जलाने को, वाह वाह वाह।
1: सुना है गैर की महफिल में तुम तो न जाओगे,
0: सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे। उस्ताद कमर जलाली,
1: कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को,
0: कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को, वाह वाह वाह वाह।
1: दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम,
0: दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम,
1: क्या हो गया जमाने को,
0: अरे है दबा के कब्र में, अता कीजिए इसे दोबारा पढ़िए,
1: दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को,
0: वाह
1: अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा,
0: अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, कहो तो
1: तुम हो तो यही छोड़ दूँ फसाने को,
0: कहो तो यही छोड़ दूँ फसाने को, वाह वाह वाह वाह।
1: कमल जरा भी नहीं तुमको खौफे रसवाई,
0: कमल जरा भी नहीं तुमको खौफे रसवाई,
1: चले हो चाहिए सब उन्हें बुलाने को,
0: क्या बात है, क्या इंतखाब था कमल जलाली के कलाम से, भाई वाह वाह वाह, ये दिल खुश कर दिया।
1: अच्छा एक और है डॉक्टर बशीर बकर साहब का है।
0: जी जी अता कीजिए।
1: बेवफा रास्ते बदलते हैं,
0: बेवफा रास्ते बदलते हैं,
1: हम सबर के साथ साथ चलते हैं, किसकी आंसू पीछे हैं फूलों में, किसके किसके आंसू छुपे हैं फूलों में, चुनता हूँ तो आंख जलते हैं,
0: हाय हाय किसके आंसू, अता कीजिए इसे पढ़िए दोबारा,
1: किसके आंसू छुपे हैं फूलों में,
0: किसके आंसू छुपे हैं फूलों में,
1: चुनता हूँ तो आंख जलते हैं,
0: हाय हाय हाय, बहुत खूबसूरत शेर।
1: उसकी आंखें इसकी आंखों को गौर से देखो, अंधेरों में चिराग जलते हैं,
0: उसकी आंखों को गौर से देखो अंधेरों में चिराग जलते हैं, बहुत खूबसूरत इंतखाब।
1: दिल में रहकर नजर नहीं आते,
0: दिल में रहकर नजर नहीं आते,
1: ऐसे कांटे कहाँ निकलते हैं,
0: क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छा इंतखाब मियां, वाह वाह वाह वाह।
1: नजर नहीं आते ऐसे कांटे कहाँ निकलते,
0: कहाँ निकलते हैं,
1: एक दीवार वो भी शीशे की,
0: आहा एक दीवार
1: चलते हैं,
0: आहा
1: वो सितारे मेरे सितारे हैं, से बड़ी दूर में निकलते हैं।
0: वाह वाह, बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह वाह।
1: कांच के मोतियों का आंसुओं का सब खुलने सब खुलने वजन में बढ़ते हैं।
0: आहा।
1: तो
0: बहुत शुक्रिया आयुष, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत खूबसूरत इंतखाब था, डॉक्टर साहब का भी और हजरत कमर जलाल जी का भी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk.
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सचिन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर माशाल्लाह हमारे सोते मुजाहिद और नादीदा लिसनर्स हमारा साथ निभा रहे हैं, कसी तादाद में मौजूद हैं। हम आपके लिए भी एक तोहफा पेश करेंगे।

अभी तो वक्त हुआ है हमारी मोहतरम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहबा लंच ब्रेक पर तशरीफ ला चुकी हैं, आगाज प्रोग्राम में ही तशरीफ लाकर हाजिरी लगा देती हैं। उनका मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा तमाम सामीन और नाजरीन की नजर है। डॉक्टर साहब ने आज हबीब जालिब का एक बेइंतहा खूबसूरत कलाम आप तक पहुंचाना चाहा है और कहती हैं कि अदब के मतवालो, शेर के शहजाइयों के नाम ये छोटा सा तोहफा, छोटा नहीं ये बहुत बड़ा तोहफा है, आपने जो कलाम मुंतखब किया है हजरत हबीब जालिब का कमाल है। कमाल शायर थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। कहती हैं कि अब और परेशान दिले नाशाद न करना, अब और परेशान दिले नाशाद न करना, वो याद भी आए तो उन्हें याद न करना, अब और परेशान दिले नाशाद न करना, वो याद भी आए तो उन्हें याद न करना, और बेदर्द जमाने को है हंस देने की आदत। क्या शेर है, क्या मिसरा है साहब, बेदर्द जमाने को है हंस देने की आदत, हर एक से बयां दर्द की सौगात न करना, बेदर्द जमाने को है हंस देने की आदत, हर एक से बयां दर्द की सौगात न करना, और फिर अश्क बहाने की इजाजत भी ना होगी, फिर अश्क बहाने की इजाजत भी ना होगी, दिल खून भी हो जाए तो फरियाद न करना, फिर अश्क बहाने की इजाजत भी ना होगी, दिल खून भी हो जाए तो फरियाद न करना, और चाहत पे हमारी कहीं इल्जाम ना आए। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या इंतखाब है भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। चाहत पे हमारी कहीं इल्जाम ना आए, भूले से कभी शिकवाए सयाद न करना, चाहत पे हमारी कहीं इल्जाम ना आए, भूले से कभी शिकवाए सयाद न करना, अब और परेशान दिले नाशाद न करना, वो याद भी आए तो उन्हें याद न करना। डॉक्टर साहब बे इंतहा खूबसूरत इंतखाब आपका, जितनी दाद दी जाए कम है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे। ये आपकी मोहब्बत है कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाती हैं। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए आमद का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और इसके बाद हम आपको बन ले लिए चलेंगे जहाँ शकील साहब ने एक गज़ल सुनना चाहिए, उनकी नज़र करेंगे। डॉक्टर साहब आदाब, बहुत शुक्रिया आमद का।

और दोस्तों अब हस्ब वादा हम आपको लिए चल रहे हैं बर्नली, जहां मौजूद हैं हमारे शकील साहब, खुशामदीद कहूंगा मैं, सिराज मुनी साहब डनकास्टर सिटी से तशरीफ ला चुके हैं हमारे बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए। अब वो तोहफा जिसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हमारे मोहतरम शकील साहब ने बर्नली से। शकील भाई आपका तोहफा हाजिर है, सब खैरियत की तो खबर थी, कोई इमरजेंसी का फोन तो नहीं था कि आप अचानक लाइन छोड़ गए? अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि सब खैर वाफियत हो। मुझे बताइएगा फोन करके जरा कि सब खैरियत है और आपका तोहफा हाजिर है। इस खूबसूरत शेर के साथ कि मेरे आंगन की उदासी न गई, रोज मेहमान बुलाए मैंने, मेरे आंगन की उदासी न गई, रोज मेहमान बुलाए मैंने। तो फाजिर कबूल कीजिए आमद का, हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। और इसके बाद क्योंकि जब हम बंडले जा रहे हैं तो वहीं से हम थोड़ा सा सफ़र करेंगे उल्लम की जानिब, और अयूब चौहान साहब का तोहफा भी उनकी नज़र कर देंगे। क्या ख्याल है? थैंक यू, नेक ख्याल है। ओके okay.

दोस्तों ये पसंद थी हमारे मोहतरम लिसनर शकील साहब की, और अब हम आपको लिए चल रहे हैं। जब यहाँ बढ़ने आए हैं तो जरा देखें छापा मार के कि अय्यूब चौहान साहब क्या कर रहे हैं, मगर जो मैं देखूंगा बताऊंगा नहीं आपको, इसलिए कि वो इस्तराहत फरमा रहे हैं और अगर मैंने बता दिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ओके, इसलिए मैं बता नहीं रहा। आइए चलते हैं अय्यूब चौहान की तरफ। ओल्ड में ये पहुंच गए हम।

और दोस्तों ये पसंद थी हमारे बहुत खूबसूरत लिसनर बेडफोर्ड की ससीन वादी से अजहर साहब की। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं डॉनकास्टर सिटी, जहां मौजूद हैं सिराज मुनीर साहब और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत जो हम उनकी नजर करने जा रहे हैं। सिराज मुनीर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, अपने हिज्जामान में रखे, नजर बद से बचाए। इसके बाद कराची पाकिस्तान चलेंगे और फिर जब कराची जाएंगे तो वहां से पंजाब की जानिब रुख करेंगे, लैया पंजाब, जहां पर नजीर अहमद साहब मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं सिराज मुनीर साहब के तोहफे की जानिब।

और दोस्तों हमारे मोहतरम भगत सिंह साहब का फोन था, उन्हें कुछ जरूरी काम से काम पर वापस जाना पड़ गया, तो हमने इनका गीत तहरीर कर लिया है अपनी डायरी में कल के वर्के में, और कल इंशाल्लाह उनका तोहफा उनकी नजर करेंगे। लेकिन मैं अब प्रोग्राम का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ जो हम नजर कर रहे हैं लैया पंजाब पाकिस्तान से, हमारे मोहतरम जनाबे नज़ीर अहमद साहब के हुजूर। नज़ीर अहमद साहब इस कदर बाकायदगी से तशरीफ लाते हैं और हमेशा उनका एक बड़ा खूबसूरत पैगाम होता है जो मैं पढ़ता हूँ कि नज़ीर अहमद साहब कहते हैं कि लैया पंजाब पाकिस्तान से नज़ीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम, सदा सलामत रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और जिसके जवाब में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप भी अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत से रखे, नज़रबद से बचाए, आपकी ये मोहब्बत सात समंदर पार से हमारे लिए बहुत काबिल तारीफ है कि इतनी दूर रहकर भी आप इस कदर मोहब्बत से नवाजते हैं। नज़ीर अहमद साहब, एक दरख्वास्त ये है कि आप गीत भी तो अपनी पसंद का लिखा कीजिए, मेरे कंधे पे बंदूक रख के आप चला देते हैं। बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खूबसूरत से खूबसूरत से खूबसूरत तर और खूबसूरत तर से खूबसूरत तरीन गीत आपकी नज़र करूं, जो आज भी मैं करने जा रहा हूं। जो गीत मैं आपकी नज़र करूंगा, मलका तरन्नुम नूरजहां का सदाबहार गीत है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ अपने नादीदा लिसनर्स और श्रोते मुजाहिदों का। आखिरी गीत नज़ीर अहमद साहब का हम आपकी मोहब्बतों और चाहतों के भी नाम कर रहे हैं कि आप दुनिया के चार कोनों से तशरीफ लाकर इस कदर कसीर तादाद में मेरे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, नजरे बद से बचाए। अब हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम अहबाब का कि जिनकी आमद में, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आगाज भी मैं इसी से करता हूँ, इसलिए कि प्रोग्राम सस्ता बनता जब है जब आपकी आमद होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जिस कसीर तादाद में आप तशरीफ लाए हैं ये मेरे लिए बाइस फख्र है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नजर बद से बचाए, सेहत से रखे, हमारी ढेरों दुआएं हमेशा हमारे सुनने और देखने वालों के साथ रहेंगी। अब इजाजत का वक्त है, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को भी इजाजत दीजिए। आपका, हमारा, हम सबका अल्लाह हाफिज़ो नासिर, शब बख़ैर, आखिरी तोहफा हाजिर है। नज़ीर भाई आपके लिए और सामीन नादीदा लिसनर्स के लिए।

0: Affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
4: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8ATY,
5: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
6: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब लिए एतमाद नाम। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मूत रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मूत रिजवी।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: exchange, additional party charge apply. Western Union Payment Service GB Limited. IK Company authorized by the UK Financial Authority.
1: दूर का सहरा सुहाना लगा है।
2: ए दुल्हा जब शेर मिलान हाउस की नेगा तो सुझे ही सुना।

0: 9 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
0: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
0: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
4: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: It's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 93.4 अदर 104 रोड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने डलवाया है, हम बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी स्पेशल का फायदा उठाया है, जहां फ्रॉम ओनली 299 पर।

0: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
1: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सामीन, ब्रेडफोर्ड और इसके मुताफात में अजान का वक्त हुआ जाता है।

सामी नबी आप समाप्त कर रहे थे, तुमसे बना मेरा जीवन, तुम बिना मेरा जीवन कभी मुझसे जुदा ना होना, तुमसे बना मेरा जीवन कभी मुझसे जुदा ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना। अनुराधा पदवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत सामी ने आपने समाप्त फरमाया। उम्मीद करते हैं ये गीत आपको पसंद आया होगा। आने वाला गीत जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम होगा, और आपके तरफ से जितने भी आपके दोस्त हैं, असर रियासत हैं, पापा शफीक हैं, तारक दुल्फी हैं, महमूद सुल्तान कराची वाले हैं, सभी के नाम यही गीत होगा। और साथ साथ जैसे ही आपकी वो होती है फरमाइश शायरी की, वो भी साथ शामिल करते हैं जनाब। वफा के कैद खानों में सजाएं कब बदलती हैं, वफा के कैद खानों में सजाएं कब बदलती हैं, बदलता दिल का मौसम है हवाएं कब बदलती हैं, बदलता दिल का मौसम है हवाएं कब बदलती हैं, मेरी सारी दुआएं तुम्हीं से ही मंसूब हैं हमदम, मेरी सारी दुआएं तुम्हीं से ही मंसूब हैं हमदम, मोहब्बत हो अगर सच्ची दुआएं कब बदलती हैं, मोहब्बत हो अगर सच्ची दुआएं कब बदलती हैं, कोई पाकर निभाता है कोई खोकर निभाता है, कोई पाकर निभाता है कोई खोकर निभाता है, नए अंदाज होते हैं वफाएं कब बदलती हैं, नए अंदाज होते हैं वफाएं कब बदलती हैं, वफा के कैद खानों में सजा कब बदलती है, वफा के कैद खानों में सजाएं कब बदलती हैं, बदलता दिल का मौसम है, बदलता दिल का मौसम है हवाएं कब बदलती हैं, बदलता दिल का मौसम है हवाएं कब बदलती हैं।

एक दूजे के दिल में आ गए, एक जान हो गए हम, कभी हम ना हों जुदा। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने समाप्त फरमाया सामईन। अब देख रहा हूँ कि वक्त आ जाता है कमर्शियल ब्रेक का, गीत प्ले कर दें। अभी 3 मिनट हैं बाकी, तो सोच रहे हैं क्या करें, गीत ले लो। तो जी हाँ, गीत जो शामिल करते हैं भाई जहाँ साहब, आपके नाम करते हैं गीत, और जी हाँ, और आप सभी के नाम भी यही गीत होगा। और मिलते हैं ब्रेक, गीत इस गीत के उस ब्रेक और ब्रेक के उस पार, हमारे साथ रहिएगा।

0: मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिल ये दुआ मांगे।
1: Nation Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
13: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
8: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
13: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
14: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
15: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

इतना प्यार किया है तुझसे इसका मुझको पता नहीं, इतना प्यार किया है तुझसे इसका मुझको पता नहीं। बहुत ही खूबसूरत गीत स्वामी ने आपने समाप्त फरमाया। उम्मीद करते हैं ये गीत भी आज बहुत पसंद आया होगा। चौधरी मुजफ्फर साहब, आपकी लिस्ट हमारे सामने आ गई जनाब। आने वाला गीत आपके नाम करेंगे और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के नाम इसमें आसफ रियासत हैं, चौधरी फरियाद हैं, चौधरी रुखसार हैं, ये महबूब इलाही हम हैं, जनाब तारक जुल्फी हैं, जवेद मीर हैं, तारक भट्ट हैं, शकील भाई हैं, हीरा जी हैं, आमर शहजाद हैं, चौधरी उस्मान हैं, सफीउल्ला भाई हैं और वाजिद हेड्सफील्ड वाले, अयूब भाई हैं, चौधरी मनीर चकी वाले हैं और शरफुद्दीन पापा हैं, ख्वाजा शफीक हैं, सलीम भाई हैं उर्फ रफ़ी, अतीका जी और जहांगीर ड्यूसबरी वाले सभी के नाम ये आने वाला गीत होगा चौधरी मुजफ्फर साहब की तरफ से। मुझे शौक था तेरे साथ का जो ना मिल सका, चलो खैर है, मुझे शौक था तेरे साथ का जो ना मिल सका, चलो खैर है, मेरी ज़िंदगी भी गुजर गई तू भी जा चुका, चलो खैर है, मेरी ज़िंदगी भी गुजर गई तू भी जा चुका, चलो खैर है, ये घुटे घुटे से हैं सिलसिले, ये रुके रुके से तल्लुकात, ये घुटे घुटे से हैं सिलसिले, ये रुके रुके से तल्लुकात, ना मैं कह सका कभी खुल के कुछ, ना तुम सुन सका, चलो खैर है, ना मैं कह सका कभी खुल के कुछ, ना तू सुन सका, चलो खैर है, कभी तुमको ज़िद थी मैं मिलूं, कभी मैं बज़िद था कि तुम मिलो, कभी तुमको ज़िद थी कि मैं मिलूं, कभी मैं बज़िद था कि तुम मिलो, यूं ही धीरे धीरे ख़त्म हुआ ये भी सिलसिला, चलो खैर है, यूं ही धीरे धीरे ख़त्म हुआ ये भी सिलसिला, चलो खैर है, मुझे शौक था तेरे साथ का, मुझे शौक था तेरे साथ का जो ना मिल सका, चलो खैर है, जो ना मिल सका, चलो खैर है।

0: तू शायर है मैं तेरी शायरी, तू शायर है मैं तेरी शायरी, तू आशिक है मैं तेरी आशिकी। बहुत ही प्यारा गीत फिल्म साजन से लिया गया अलका याग्निक की आवाज़ में। सामिन आपने सुना इसमें लव में पहली दफ़ा मेरे ख्याल में मैंने संजय दत्त को शरीफ आदमी देखा, नहीं तो फाइटिंग ही उसको जचती थी, लेकिन इसमें बहुत जचे। उनकी आंखों में एक शायराना अंदाज था, क्योंकि उसमें फाइटिंग ही से नहीं दिखाई गई उनकी, क्योंकि उसमें एक उनकी एक टांग ठीक नहीं थी, और इसलिए वो आस्ता आस्ता चलते रहे और गीत तो शायराना अंदाज था उनकी उनका तो बहुत ही प्यारे लगे इसमें उनका अंदाज जो था संजय दत्त का। वरना वो तो हर वक्त जंगजू ही रहे जितनी भी फिल्में उनकी आईं, तो इसमें और सड़क फिल्म में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं साथ साथ हम देख भी रहे होते हैं, गीत बहुत ही प्यारा गीत था और उम्मीद करते हैं ये गीत आपको भी पसंद आया होगा। सामिन मैं देख रहा हूँ ब्रेक का टाइम होने वाला है, इसलिए साथ थोड़ी बात करने लग गया साजन फिल्म के बारे में। तो बहुत ही अपने वक्त की हिट सुपर हिट फिल्म थी और देखने वालों ने बहुत पसंद किया, और जनाब संजय दत्त का काम को भी बहुत सराहा गया, हमें बहुत अच्छा लगा उनका काम। वो चाय पिलाता था, उनको देखता रहते थे ये बैठ के एक शॉप में, तो वो चाय पिलाता था, बोलता है वो एक आगे बैठता है सामने देखता रहता है और चाय पीता रहता है, तो बहुत अच्छा उस वक्त तो ये लगी। अपने वक्त वक्त में बहुत अच्छी फिल्में रहीं ये, और आप जी भी उनका सिक्का जमा हुआ है जनाब जी, इस वक्त भी इसके गीत चलते हैं और लुत्फ आ जाता है, आपको भी अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं। ये गीत आने वाला गीत मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसे करूँ, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, तो उसके लिए क्या करें जी, गीत नहीं चला सकते। चलिए अशार सुनाते हैं आपको, साथ ही ब्रेक आ जाएगी। एक बात कहूँ अगर सुनते हो, एक बात कहूँ अगर सुनते हो तो मुझको अच्छे लगते हो, एक बात कहूँ अगर सुनते हो तो मुझको अच्छे लगते हो, कुछ पागल पागल लगते हो, कुछ पागल पागल लगते हो, हैं जाने वाले और बहुत हैं चाहने वाले और बहुत, पर तुम में है एक बात बहुत, हैं चाहने वाले और बहुत पर तुम में है एक बात बहुत, तुम अपने अपने लगते हो, तुम अपने अपने लगते हो। वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का।
1: radio.co.uk This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स।
9: और
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड

0: मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
0: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
0: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
0: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: day. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01services.uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफ्रूट का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल

0: Kamad Naam, Safe Rider.
1: DSA Audit Approved Instructors, Automatic and Manual Cars. Online Theory Classes ki sahulat. Aaj hi visit kijiye.
0: 33 Wetley Lane, Bradford,
1: 01274201679. SafeRider.co.uk.
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
2: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: हसीत जमाने से जाएंगे हम, लेकिन हंसता हंसता तो कोई नहीं जाता, सब रोते हुए जा रहे हैं।
1: सिर्फ मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन हंसता हंसता गया, फिर भी आहत में रोने लग गए बेचारा।
0: जितनी मर्जी दौलत कमा ले, बंगले ले ले, लेकिन इंसान रोते ही जाता, क्योंकि आखिरी वक्त जब बुढ़ापा आ जाता ना, उस वक्त कोई भी साथ देने वाला कोई भी, सब छोड़ कर चले जाती है। सही,
1: जिंदगी रुला देती है,
0: जिंदगी
1: रुला देती है और रुला भी देती है, दोनों काम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अमित जी अपने अग्निपथ में वो समुद्र से पानी से बाहर निकला तो पांचा शेर सामने खड़ा होता है, तो उसको कहता है वक्त पे पहुंचने का अपना पुराना आदत है, आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए माफी चाहते हैं। ओ कोई शाला हमारे ऊपर है, ये किचड़ी छाला, ये सोचा उसको पानी से धो डाले इधर, ये विजय जिला चौहान पूरा नाम, कंच के मेल में रहने वाला कांचा सेठ, नहीं मैं पहले तुमको मिल चुका है, वो बचपन में मैं तुम्हारा गाड़ी साफ करता था कपड़े के साथ, आज मैं तुम्हें कपड़े पहनाने आया हूँ।
1: वाह।
0: इसी के नाम तक वोट डालोगे छोटा या जब वे कमरे में आते हैं तो वहाँ कुछ गुंडे बैठे होते हैं, तो वहाँ टेबल पर बैठ के तो कहता फोन की घंटी बजती है, तो कहता चला इधर टेलीफोन का घंटी बहुत बजता है, गलत चीज बनाया है टेलीफोन, इधर से आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, जैसे तुम लोग करते हैं।
1: जबरदस्त जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अरे भाई बहुत अच्छा बोलता है आप आए।
0: लेकिन आपने आपने आसन भाई को बोलो टेलीफोन का कुछ करें।
1: हाँ तो कहते हैं भाई सुन को फोन बदले, भूत इसका आवाज में थोड़ी सी खराश आती है जिस वक्त आप कॉल करते हैं, हमारी आवाज तो ठीक होती है माइक पर लेकिन आपको ऐसा लगता है, इसीलिए आप कहते हैं फ्री अलमारे।
0: तो चली चली फिर चली चली इश्क दी हवा चली,
1: ओए ओए
0: फिर चली चली इश्क दी हवा चली, कोई लैला कोई मजनू कोई शीरी कोई छला।
1: जबरदस्त।
0: मेरे रंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे रंगने में तुम्हारा क्या काम है, अरे जो इनाम वाला वही बदनाम है, अरे जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बिस्तर पे लेटा दे गधे का क्या काम है।
1: आवाज यार गद्दा गद्दे की जरूरत नहीं है फिर, है ना। बेशक बेशक जबरदस्त भाई इकबाल।
0: अभी भी हमारा कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट कम्बिनेशन जो भी कहते हैं साथ साथ ही है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम कभी नाराज नहीं हो रहा, अभी कभी कभी हम कभी हमारे बीच में कभी लड़ाई भी नहीं हुई, ना जो आर्ग्यूमेंट भी है, बस प्यार से बातें करते हंस खेल के चली जाती है।
1: बिल्कुल और क्या,
0: लेकिन आजकल की दोस्ती आपको पता है, एक दिन आज दोस्ती कल जुदाई, बस ऐसे ही हो रहा है ना आजकल।
1: बिल्कुल ये तो है।
0: और सुनाए सब फैमिली सब ठीक है?
1: बिल्कुल ठीक ठाक अलहमदुल्ला। जबरदस्त जी भाई अहमद भाई इकबाल साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपने आके डायलॉग सुनाए शेर सुनाए और बाकी का गीत तालियों के गूंज में हम आपको अलविदा कहते हैं, और साथ फिर आपको मेरे ख्याल में गीत के साथ ही अलविदा कहते हैं।
0: और ये भी सुनते जाइए, ये भी सुनते जाइए, कहते हैं ना फिल्म दीवार में बंगला है, बैंक बैलेंस से गाड़ी आपके पास क्या है, मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह बहुत खूब,
0: जिसके पास माँ है उन्होंने और की चाहिए,
1: और की चाहिए
0: माँ।
1: बिल्कुल
0: उन्होंने पूछो जो मामा बिछड़ गया उन्होंने पूछो उन्होंने की हाल है।
1: बिल्कुल
0: सही
1: हाल, जिन्हें मामा टुट जाती उन्होंने पूछो वाकई की हाल।
0: और ऐसे ऐसे नाफरमान बच्चे ने जिन्होंने माँ पे भी जाके कब्र भी नहीं देखी, साथ ही माँ पे भी कब्र कितने औलाद की करना।
1: बिल्कुल बस जी अल्लाह ताला हिदायत दे सब नु,
0: कोई खत्म नहीं पार दे कुछ नहीं, बस पैसे के पीछे भजी जाने ने लोग, तौबा तौबा पैसे ने उन्होंने तबाह कर देने, एक दिन खत्म कर देना।
1: जा
0: थोड़ा बहुत प्यार हो جاؤ قبر سے فاتحہ پڑھو, ختم دعا اپنے ماں پیو دی اور یاد کرو تھی. ٹھیک ہے بابو, اپنا خیال رکھنا.
1: چلو جی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ جناب. تالیاں دی گونج وچ تہانوں الوداع کرنے ہاں, پہلے تالیاں تے پھر گیت نال. ٹھیک ہے جی جناب, ان کو تالیاں گونج میں اور ساتھ ہی. ویسے یا ویسے کٹ جائے گی.

सामिन अभी आप समाप्त कर रहे थे इकबाल साहब की फरमाइश पर, अपनी तो ऐसी तैसी वतन क्या था वैसी गुजर जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली, बहुत ही ये लवारस फिल्म का गीत था और फरमाइश थी भाई इकबाल की, और ख़ास करके स्पेशल उनका होता है कि जिस वक्त मैं एंट्री मेरी एंट्री हो तो आपने यही प्ले करना है, तो यह उनके लिए था, और उम्मीद करते हैं आपको भी ये गीत पसंद आया होगा। आने वाला गीत भी बाकी हमारे प्रोग्राम का वक्त है 7 मिनट, चलिए जितने भी हो सकेंगे एक या दो गीत शामिल करेंगे। जी हाँ, आने वाला गीत तारिक जुल्फी साहब आपके नाम होगा, भाई जाज साहब आपके नाम भी, कार नाइन तारिक साहब आपके नाम भी, भाई जहीर साहब आपके नाम भी यही होगा। आपकी कॉल आई लेकिन मैं थोड़ा बिजी था, साथ साथ आने बात हो रही थी, भाई जहीर साहब आपके नाम भी यही गीत होगा। जनाब मुझे अच्छा लगता है तुम ही को देखते रहना, मुझे अच्छा लगता है तुम ही को देखते रहना, मुझे अच्छा लगता है तुम ही को देखते रहना, तुम ही को चाहते रहना, तुम ही को सोचते रहना, तुम ही को चाहते रहना, तुम ही को सोचते रहना, तुम ही को सुनते रहना, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे संग संग चलना, वफा की आग में जलना, तुम्हारे संग संग चलना, वफा की आग में जलना, तुम्हें नाराज़ कर देना, कभी खुद भी रूठ जाना, तुम्हें नाराज़ कर देना, कभी खुद भी रूठ जाना, बहुत गहरे ख्यालों में, जवाबों में, सवालों में, बहुत गहरे ख्यालों में, जवाबों में, सवालों में, मोहब्बत के हवालों में तुम्हारा नाम आ जाना, मोहब्बत के हवालों में तुम्हारा नाम आ जाना, तुम्हारी बेरुखी पे भी तुम्हारी आरजू करना, तुम्हारी बेरुखी पे भी तुम्हारी आरजू करना, खुद अपने दिल की धड़कन से तुम्हारी गुफ्तगू करना, खुद अपने दिल की धड़कन से तुम्हारी गुफ्तगू करना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है तुम ही को देखते रहना, मुझे अच्छा लगता है तुम ही को देखते रहना, तुम ही को चाहते रहना, तुम ही को सोचते रहना, तुम ही को सुनते रहना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है।

0: BradfordAsianRadio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग,
10: उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन।

0: VAT, bookkeeping, payroll, fundraising, company formation, mortgages, accounts के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 0

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस 106
7: लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team.
1: You're
0: on
1: 01274
0: 306677.
1: 13 a.m.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.